0: समयको ख्याल राखौ। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ।
3: ग्लोबल आइमी बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिस होम इन्टरनेट।

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझी मरी बुझी मरी ब्याङ्गै न आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उहिसु सु खन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट न URL चेक लना आछ्या वा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफै न पासपोर्ट फेरदिल परिमो तारी शङ्ख लैदी विषा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

वर्ल्डिंग को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउन होस एक वर्ष को 200 एमबीपीएस इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू हुनेछन् छिटो भनेकै वर्ल्डिंग।